अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर गीत सुना, जिसके रचयिता थे सुमित्रानंदन पंत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रहलाद शिंदे के स्वर में दत्ता पाटिल की ये रचना।

दत्ता पाटिल की ये रचना अभी आपने सुनी प्रहलाद शिंदे के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये भक्ति रचना मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में रमन रंडीवे की ये भक्ति रचना।

आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

Mother,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी फोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग भाटियार. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग Pandit Sandipan Samajpati, accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Raag Bhatiyar by your artist, Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी में सितार वादन, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भटियार बाय आवर आर्टिस्ट पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital in Rag Jaunpuri. Our next artist, Anjan Saha. Accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a sitar recital in Rag Jaunpuri by our artist, Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी by our artist Anjan Saha, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kankani. Rag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwada Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिनी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरुरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं रसिया हूँ, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तरपत रैन दिन।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. He first presents rag Maru Bihag, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ektal, followed by the Chota Khayal set to Drut Tintal.

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ठुमरी, बोल हैं जादू भरे नैना।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग, कंटिन्यूइंग विथ हिज वोकल रिसाइटल पंडित भीमसेन जोशी। नाउ प्रेजेंट्स अ ठुमरी।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए अभंग, बोल हैं देव विट्ठल।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। पंडित भीमसेन जोशी नेक्स्ट प्रेजेंट्स अभंग।

0: अभी आप सुन रहे थे अभंग। कार्यक्रम के आखिर में पंडित भीम जोशी की आवाज में ये भजन प्रस्तुत है, बोल हैं जो भजे हरि को सदा।
1: यू जस्ट हर्ड अभंग बाय पंडित भीम सेन जोशी। ही नाउ कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद अ भजन।

0: अभी आप पंडित भीमसेन जोशी का गायन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With that bhajan, we come to the end of the vocal recital by Pandit Bhimsen Joshi. This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

हाजरीन, मैंडोलिन पर एक और अनोखा काम पेश करने से पहले उसके बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक सबसे अलग और अनहोनी बात, की टू स्ट्रिंग यानी मैंडोलिन की खूंटी को घुमाकर राग अदा करना, जिसमें आप वीणा का टोन महसूस करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंडोलिन पर इस तरीके से बजाने के ईजाद करदा यानी इन्वेंटर ऑफ दिस स्टाइल मेरे वालिद और उस्ताद मैंडोलिन विज़र्ड जनाब सज्जाद हुसैन साहब, जो पहले शख्स हुए हैं जो खुद अपनी मिसाल आप हैं। शुक्रिया।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन. लीजिए सुनिए सितार पर राग सरस्वती. आलाप जोड़ झाला के पश्चात विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सितार एंड सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित पुष्पराज गोष्ठी. लिसन राग सरस्वती ऑन सितार. आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल.

ये था सितार पर राग सरस्वती। तबले पर संगत कर रहे थे भूषण परचुरे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पुष्पराज कोष्टी अब सुरबहार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग खमाज। लीजिए सुनिए आलाप जोड़ झाला, गत चौताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग सरस्वती ऑन सितार अकंपनीड ऑन तबला भूषण परचुरे। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित पुष्पराज कोष्टी प्रेजेंट्स राग खमाज ऑन सुरबहार। आलाप जोड़ झाला फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: आप सुन रहे थे सुरबहार पर राग खमाज, पखावज पर संगत कर रहे थे विवेकानंद कुरांगले। इसी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पुष्पराज गोष्ठी का सितार और सुरबहार वादन संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग खमाज ऑन सुरबहार, accompanying him on Pakhavaj, Vivekanand Kurangale. With that, we conclude Sitar and Surbahar recital by Pandit Pushparaj Koshti. This was the contribution of AIR.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नारू गोपाल पात्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani instrumental recital followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Kedar. Our artist is Dipankar Dotto. Accompanying our artist on the tabla is Naru Gopal Patro. Listen now to the sitar in the rag Kedar. Our artist Dipankar Dotto.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग केदार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे दीपंकर दत्ता। आपके साथ तबले पर थे नाडू गोपाल पात्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दोला देवनाथ। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्ता और हारमोनियम पर हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दोला देवनाथ।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग केदार। आवर आर्टिस्ट वॉज दीपंकर दत्तो। Accompanying our artist on the tabla was Naru Gopal Patro. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra. Our artist, Dola Debnath. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Dotto and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra, our artist Dola Debnath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी दूला देवनाथ। आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्ता और हारमोनियम पर थे कमलाक्ष मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये हर आगम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Mishrapilu Thumri followed by Pahari Dadra. Our artist was Dola Debnath. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Dotto and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है सुषमा वाजपेयी का गाया शास्त्रीय गायन. सबसे पहले आप प्रस्तुत करेंगी राग भटियार में ख्याल. विलंबित के बोल है उचक गई नींद मोरी बलमा, जो कि एक ताल में निबद्ध है, और द्रुत के बोल है माता महाकाली, जो कि ताल में निबद्ध है. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगत कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट क्लासिकल सिंगिंग बाय सुषमा वाजपेयी. शी इज प्रेजेंटिंग राग भटियार. विलंबित कॉम्पोजिशन इज उचट गई नींद मोरी बलमा, सेट टू एकताल. द्रुत कॉम्पोजिशन इज माता महाकाली, सेट टू एकताल. एकॉम्पनिंग हर ऑन सारंगी विनोद कुमार मिश्र एंड ऑन तबला निशांत कुमार सिंह.

ये है रागम 24 घंटे सातो डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग भटियार। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग अहिर भैरव में गाल। विलंबित के बोल है अलसाने ए लालन रे संग जागे, जो कि एक ताल में निबद्ध है। द्रुत के बोल है आई बसंत की ऋतु आली, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पर संगति दे रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगति कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह। दिस इज रागम 24/7 DTH ए टाइम इंडियन म्यूजिक। यू जस्ट हर्ड राग भटियार बाई सुषमा वाजपेयी। नाउ शी विल प्रेजेंट राग अहिर भैरव। विलंबित कॉम्पोजिशन इज अलसाने ये लालन ने संग जागे इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज आई बसंत की ऋतु आली इज सेट टू तीन ताल। अकॉम्पनिंग हर ऑन सारंगी विनोद कुमार मिश्र एंड ऑन तबला निशांत कुमार सिंह।

अभी आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव। यू जस्ट हर्ड सुषमा वाजपेयी इन राग अहिर भैरव। ये है रागम 24 घंटे सातुन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग मधुकौस। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग मधुकौस बाई सुषमा वाजपेयी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन। पहले पेश है राग मालकौंस में आलाप। लंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. Alap is in Rag Malkons. The Vilambit Gat is set to Ek Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मारू बिहाग, आलाप और द्रुतगत एक तमनिबद्ध है।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Malkons by Vikas Babu and Company. Now listen to a Raag Maru Bihag.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू वर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मारू बिहाग। नाउ लिसन टू अ धुन।

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. आइए इसे है भक्ति संगीत. कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से. स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी.

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।